0: तीस बरस की अब मति उपजी, लोभ भये मित भयो माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहु न तृप्ति भयो। वृद्ध भयो अब आलस उपजी, कफनित कंठ नयो, संगति कब होना कीन ही तूने, वृथा जन्म गयो। इट्स वेरी ब्यूटिफुली डिस्क्राइबिंग,
1: टॉक्स अबाउट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, लाइक 5 year old व्हाट यू डिड, 10 year old व्हाट यू डिड, 20, 25, 30, एंड व्हेन नथिंग वाज देयर यू बिकेम, व्हेन यू बिकेम ओल्ड यू बिकेम सो टायर्ड दैट देयर वाज नथिंग, नो एनर्जी लेफ्ट टू डू एनीथिंग एल्स,
0: एंड दैट्स द टाइम यू थिंक दैट यू विल थिंक ऑफ लॉर्ड एंड इट,
1: नो एंड यू थॉट ओ माय गॉड आई लॉस्ट एवरीथिंग, नथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव इन दिस होल लाइफ।
2: यही तो माया है, एंड वी नो इट बट वी फॉरगेट इट,
3: दैट इज व्हाट the bhakta is asking, why do we forget? So we'll come to that in the next episode. Why do we forget and what is this mystery? So dear listeners, we continue that in the coming episode. I think there is more to discuss on this first segment, chapter 6 of Sandhya Nivarini. As always, please feel free to join us. You can write to listener@radiosai.org and send us your comments on our WhatsApp number 9393-258-258. Let's ensure that every moment Bhagwan has given us, every present becomes a present that we can make to him about how we have lived a life in service, in Namasmarana, and in this beautiful journey from I to we to he. Thank you so much. Sanam.
4: Sai Ram, you just heard an episode of our radio program, Vahini Satsang. This is a segment of Radio Sai's Thursday Live, hosted by Bishu Prushti, and today's episode was first broadcast on 10th October, 2019. Dear listeners, we hope you like this program. Please send us your feedback by either email or WhatsApp. Our email ID is listener@radiosai.org and our WhatsApp number is 9393-258-258. Thank you and loving Sai Ram from Prashanthi Nilayam.

हे सृजनहार कहो नानक गुर खोए परम एको अलो पार ब्रह्म। आराम कली महला पंजवा कोट जन्म के बिनसे पाप हर हर जपत नाही संताप। गुर के चरण कमल मन वसे महाबिकार तंते सब नसे। गोपाल को जस गाओ प्राणी अकथ कथा साची प्रपूर्ण ज्योति जो समानी रहाओ। तृष्णा पूख सब नासी संत प्रसाद जपया बनासी। रहन दिनस प्रभ सेवक मानी हर मिलने किए निशानी। मिटे जंजाल होए प्रभ दयाल गुर का दर्शन देख निहाल। परा पूर्वला कर्म बने आया हर के गुण नितरस ना गाया। हर के संत सदा प्रवान संत जना मस्तक निशान। दास की रेण पाए जे कोए नानक तिसकी परमगत होए। राम कली महला पंजवा दर्शन कौ जाइए कुर्बान। चरण कमल हृदय तर ध्यान। तूर संतन की मस्तक लाए जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए। जिस भेट मिटे अभिमान पार ब्रह्म सब नदरी आवे। कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ। गुर की कीर्त जपिए हर नाओ गुर की भगत सदा गुण गाओ। गुर की सुरत निकट कर जान गुर का शब्द सत कर मान। गुर बचनी समसर सुख दुख कदे ना व्यापै तृष्णा भूख। मन संतोख शब्द गुर राजे जब गोबिंद पढ़दे सब काजे। गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुरदाता दयाल बख्शिंद। गुर चरनी जा का मन लागा नानक दास तिस पूर्ण भागा। राम कली महला पंजवा किस परवासै बिचरै भवन। मूड मुगद तेरा संगी कवन राम संगी तिस गतनी जानै। पंच बटवारे से मीत कर मानै सो कर सेव जित उदरै मीत। गुण गोविंद रविया दिन राती साध संग कर मन की प्रीत रहाओ। जन्म बिहानो अहंकार अरवाद तृप्त न आवै बिखिया साध। परमत परमत महा दुख पाया तरी।

पतत पुनीत प्रभतेरो नाम अपने दास कहो की जय दान। कर कृपा प्रभ गत कर मेरी शरण गही नानक प्रभ तेरी। रामकली महला पंजवा ए लोके सुख पाया नहीं पेटत धर्म राया। हर दरगह शोभावंत फुन गर्भ नाही बसंत। जानी संत की मित्राई कर कृपा दीनो हर नामा पूर्व संजोग मिलाई। रहाओ गुर कै चरण चित लागा तन तन संजोग सुभागा। संत की धूर लागी मेरे माथा किल विख तुख सगले मेरे लाथे। साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी। जन का सफल दर्श जीठा नाम प्रभु का कटकट बूठा। मिटाने सब कल कलेस जिसते उपजे तुस्मै प्रवेश। प्रगटे अनूप गोविंद प्रपूरे नानक बख्शेंद। रामकली महला पंजवा गऊ कौ चारे सारदूल कौडी का लख हुआ मूल। बकरी कौ हस्ती प्रतपाले अपना प्रभ नदर निहाले। कृपा निदान प्रीतम प्रभ मेरे वर्ण ना साकौ बहु गुण तेरे। रहाओ दीस्त मास ना खाए बिलाई महाकसाब शुरी सट पाई। करण हार प्रभ हृदय बूठा फाथी मछली का जल है टूटा। सूके काष्ट हरे चलूल ऊंचे थल फूले कमल्यानूप। अग्निवारी सतगुरदेव सेव के अपनी लायो सेव। अकिर्त कणा का करे उधार प्रभ मेरा है सदा दयार। संत जना का सदा सहाई चरण कमल नानक शरणाई। राम कली।

चार तीन अमर्थ की चूकी केर साध संग चूके पै फेर सिमर सिमर जीवा गोबिंद कर कृपा राख्यो दास अपना सदा सदा साचा बख्शेंद रहाओ। दाज गए त्रण पाप समेर जप जप नाम पूजे प्रपैर आनंद रूप प्रगट्यो सब थान प्रेम भगत जोरी सुखमान सागर तरयो बाचर खोज खेद न पायो नै फुन रोज सिंध समायो कटके माहे करण हार कहो किश अचरज नाहे जौ छूटाओ तौ जाए पयाल जौ काढ्यो तौ नजर निहाल पाप पुन हमरै वस नाहे रसक रसक नानक गुण गाहे राम कली महला पंजवां ना

हर चरण कमल सरनाए मना, राम नाम जब संग सहाई, गुरमुख पावे साई तना। रहाओ उन्ने काजन होवत पूरे, काम क्रोध मसद ही चूरे। करै बेकार जिया रे कह ताई, गाफल संग न तसुआ जाई। धरत तोह अनक शर जान, कौडी कौडी कौ खाक सिर शान। जिन दिया तसेना चेतै मूल, मिथ्या लोभना उतरै सूल। पार ब्रह्म जब पहे दयाल, इहमन होवा सादरवाल। हस्त कमल लड़ लीनो लाए, नानक साचै ऐसा समाए। राम कली महला पंजवा, राजा राम की सरनाए। निरपो पय गोविंद गुण गावत, सा संग दुख जाए रहाओ। जा कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले का इसवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसकै मस्तक हाथ गुर धरै, सो दासा देसा काहे करै। जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुरु उपर कुर्बान। गुर परमेसर भेट निहाल, सो दर्शन पाए जस होए दयाल। पार ब्रह्म जिस कृपा करै, साध संग सो पवजल तरै। अमृत पीवाओ साध प्यारे, मुखी उजर साचै दरबारे। अंध करो तज सगल बेकार, नानक हर जप उतरो पार। राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बै संतर भागै। माटी कौ जल दै दिस त्यागै, ऊपर चरण तलै आकाश। कटमै सिंध की ओ प्रगास, ऐसा समर्थ हर जियो आप। निमख ना बिसरै जी भगतन कै, आठ पहर मंता को जाप। रहाओ प्रथमे

लक्ष्मी दिसै इनमें किशुना संग लिया बिखैठ गौरी खाए भुलाना माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता गर्भ जोन में किरत पया पुरब कमाने छोड़ै नाही जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावै अवरा त्रिसन ना बुझै बहुत हया असाद रोग उपजया संत दुखन देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्हीं साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्मया। रामकली महला पंजवा ऐसा पूरा गुरदेव सहाई जाका सिमरन बिरथा ना जाई रहाओ। दर्शन पेख धोए निहाल जाकी तूर काटै जमजाल चरण कमल बसे मेरे मन के कार्य सवारे सगले तन के। जाकै मस्तक रखै हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ पतो धारण कृपा निधान सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान तजै विकार बिनस अभमान एक तिहाई साध कै संग पाप बिनासे नाम कै रंग। गुर परमेसर सगल निवास घट घट रव रया गुणतास दर्श देह तारो प्रभ्यास नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवा घर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाई आवा गौण मिटै मेरे मीत रहाओ। गुण गावत होवत प्रगास चरण कमल में होए निवास संत संगत मैं होए उधार नानक भव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवा गुरपूरा मेरा गुरपूरा राम नाम जप सदा सुहेले सगल बिना से रोग कूरा रहाओ। एक अरादो साचा सोए जाकी सरण सदा सुख होए नींद सुहेली नाम की लागी भूख हर सिमरत बिनसै सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई गुरपूरै सब चिंत मिटाई आठ पहर प्रभ का जप जाप नानक राखा हो आयाप। राग राम कली महला पंजवा पड़ताल करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं जलन थलन बस गगन एक एक अंकारं रहाओ। हरन धरन पुन पुनः करन नह ग्रह निरंहारं गंभीर तीर नाम हीर ऊंच मूच अपारं करन केल गुण अमोल नानक बलिहारं। राम कली महला पंजवा रूप रंग सुगंध भोग त्याग चले माया छले कनक कम नी रहाओ। भंडार दर्ब अरब खरब पेख लीला मन साधार नह संग गमनी सोत कलत्र प्रात मीत उर्ज परयो परम मोहयो ए बिरख शमनी। चरण कमल सरन नानक सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग राम कली महला नामा ते पदे हरे मन ओट लिहो हर नामा जाकै सिमरन दुरमत नासै पावै पद निर्बाना रहाओ। वडभागी ते जन कौ जानौ जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै फुनबै कुंड सिधावै अजा मलको अंतकाल मैं नारायण सुदयाई जांगत कौ जोगी सरबाहित सोगत छन मैं पाई। नाहन गुण नाहन कश विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम का देखो अपै दान ते दीना।

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधा लाई, तिसै श्री वो तां सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आप यो पाए अलख न लखना जाई, आपे मारजी वाले आपे तिसनो तिल ना तुमाई, एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई, सेवड़ भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कह न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम भुलाई, वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंध फिरै लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया सतगुर बूझ बुझाई, एक ना नामो आप पुलाए एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सा लाहो संतो तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर ना कोई राजा करत पावस बढ़त बनाई, न्याओ तिसै का है सद साचा विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्यावो जिन गुरमुख बणत बनाई, सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रया विस्माद मेरा प्रभ रवया सर्ब थाई। रामकली महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन्ही किया परवृत पसारा किन्ही किया पूजा बिस्तारा, किन्ही निवल भयंग मसादे मोहे दीन हर हर आराधे दे।

कोई कहतो अनन भगवती मोहे दिन हर हर उठ लीती। किन्हीं कहया हौ तीर्थवासी कोई अन्न तज पया उदासी। किन्हीं

बाबा पाई, कोई कह मैं तने पसारा, मोहे दीन हर हर आधारा। किन्हीं कुगर निरत कराई, किन्हू वर्तने माला पाई, किन्हीं तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दीन हर हर हर त्याया। किन्हीं सिद्ध बहुत चेटक लाए, किन्हीं पेख बहुत हाट बनाए, किन्हीं तंत मंत बहु खेवा, मोहे दीन हर हर हर सेवा। कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत यो मंडित, कोई करे आचार सुकरणी, मोहे दीन हर हर हर सरणी। सगले कर्म धर्म जुग सोदे, बिन नामे यो मन ना प्रबोदे। कहो नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा महासीत लाया। राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जंतु करया, माटी का ले देहरा करया। उगत जोत लै सुरत परीखया, मात गर्भ मैं जंतु राखया। राखण हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना रहा। जिन दिए